वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो सत्य नाम बोलो सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो नित्य नित्य जप